सुप्रभात अंबाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 7 जुलाई 2026 मंगलवार, अषाढ़ कृष्ण पक्ष सप्तमी 2083 विक्रम संवत। अंबाला में सूर्य उदय हुआ है 5:27 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:28 पर। आज वर्ल्ड चॉकलेट डे भी मनाया जा रहा है।

शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भाव सहमति होने पर हिंसा और अपराध वृत्ति का अभाव होगा तथा हर तरफ मंगलमय वातावरण निर्मित होगा।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। प्रस्तुत है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 6। आज के हमारे आमंत्रित मेहमान है श्रीमती कविता अग्रवाल और आज का विषय रहेगा परिवार और समाज। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।
2: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी और आप सुन रहे हैं घर परिवार का एक नया अंक। आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो न केवल अपने परिवार की आधारशिला है बल्कि समाज के प्रति भी गहरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी रखती है। इन्होंने अपने जीवन में परिवार और समाज के बीच संतुलन को समझने और उसे साकार करने का जो प्रयास किया है वो प्रेरणादायक है। आइए स्वागत करते हैं कविता अग्रवाल जी का, जो आज हमें परिवार और समाज के विषय पर अपने विचारों से समृद्ध करेंगी।
3: किरणी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका प्रदान करा कि मैं अपने विचार, परिवार और समाज के प्रति मेरे जो भी विचार हैं वो मैं अपने श्रोताओं से साझा कर सकूं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने का। मेरा पहला प्रश्न आपसे है, हम अक्सर सुनते हैं कि परिवार और समाज एक दूसरे के पूरक है, लेकिन हर किसी के पास इसकी अपनी परिभाषा होती है। मैं जानना चाहूंगी कि आपके दृष्टिकोण से परिवार और समाज का क्या अर्थ है।
3: देखिए, जिन लोगों के बीच हम सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां हमें जजमेंट का डर नहीं होता, हम उन्मुक्त होकर अपने विचार रख सकते हैं, अपनी डिमांड्स रख सकते हैं, जहां पर हम फिजिकली और इमोशनली सुरक्षित महसूस करते हैं, जिन लोगों पर हम अपना हक जता सकते हैं और जहां हर व्यक्ति एक दूसरे की फिक्र करता है और एक दूसरे की जिम्मेदारी लेता है, उसे हम परिवार कह सकते हैं। लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं तो जैसे ही हम अपने घर परिवार से बाहर कदम रखते हैं तो जो लोग हमें मिलते हैं वो हमारा समाज है, जिन्हें हम जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, परंतु उनके प्रति हमारी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जिसे हमें निभाना ही निभाना है। निभाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई हमारी स्ट्रिक्ट जिम्मेदारी नहीं है कि हमें उसको निभाना है। उसे हम समाज कह सकते हैं। सब परिवार हैं जो, वो मिलकर एक समाज बनाते हैं और सब समाज मिलकर देश बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं परिवार सबसे छोटी इकाई है और समाज का ही हिस्सा है। हम यह भी कह सकते हैं कि समाज वह जन समूह है जिन्हें हम निजी तौर पर नहीं जानते, ना ही वो और ना ही हम एक दूसरे के दुख सुख के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन फिर भी हम आपस में बंधे हुए हैं एक मजबूत डोर से।
2: बहुत सही कहा आपने, बहुत ही गहराई से समझाया आपने। ये सही है कि परिवार और समाज एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं। आपका दृष्टिकोण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। परिवार और समाज के इस जुड़ाव को हम अपने जीवन में कैसे महसूस कर सकते हैं, ये आपने बहुत खूबसूरती से समझाया। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, परिवार और समाज को हमेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना गया है, आपकी नज़र में इन दोनों के बीच का संबंध किस तरह का है? क्या ये रिश्ता परस्पर सहयोग पर आधारित है या इनमें से कोई एक दूसरे पर अधिक निर्भर करता है?
3: देखिए किरणी जी, ये संबंध जो है ना, ये बहुत ही गहरा संबंध है। हम हर वक्त अपने घर पर नहीं रह सकते। जैसे ही हम अपने परिवार से बाहर निकलते हैं, हम अपने आप को समाज में पाते हैं, या फिर यूं कहिए हम ही वो समाज हैं। हम उसका एक अभिन्न अंग हैं, हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। और ये हर एक व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है कि उन्हें कैसा समाज चाहिए। जो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमें बनना पड़ेगा। अगर हम फूल बांटेंगे तो बदले में फूल ना भी मिले, कम से कम हमारे हाथ तो महकेंगे ना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कई परिवार मिलकर समाज बनाते हैं और एक बड़ा परिवार बन जाता है, तो यह हम सबका उत्तरदायित्व है। अपने परिवार की तरह सबसे निस्वार्थ प्रेम करें, सबके साथ सहज रहें और बिना किसी को जज करे उसका साथ दें, उसको सपोर्ट करें। तभी तो हम, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत ही एक मशहूर लाइन है वसुदेव कुटुंबकम, तभी तो हम इस नारे को सच कर पाएंगे कि जो हमारा सारा विश्व है वो ही हमारा परिवार है। संबंध तभी बनता है जब दोनों तरफ से सहभागिता हो। अगर हम समाज को अपना परिवार समझेंगे तभी उसके लिए चिंतित होंगे और तभी उसके लिए हम कुछ कर पाएंगे, सच्चे मन से कुछ कर पाएंगे। बाकी संबंधों की तरह यह भी गिव एंड टेक का रिश्ता है। जैसा दोगे वैसा पाओगे। जैसा समाज हमें चाहिए तो हमें अपने आप को उस समाज में फिट करने के लिए वैसे ही एक्शंस करने पड़ेंगे, वैसे ही विचारधारा रखनी पड़ेगी, तभी हम एक मजबूत और एक फ्रूटफुल समाज बना पाएंगे।
2: सही कहा आपने, सचमुच परिवार और समाज के बीच ये तालमेल बेहद अहम है। आपकी बात से ये साफ होता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी बातचीत के दौरान हमने परिवार और समाज के बारे में कुछ सीखा, लेकिन अब थोड़ा म्यूजिक का मजा लेते हैं। कविता जी, हम जानते हैं कि हर किसी का कोई ना कोई पसंदीदा गाना होता है जो उनके दिल के बहुत करीब होता है, तो आपके पसंद का कौन सा गाना हम श्रोताओं को सुनाएंगे अब?
3: देखिए, जो पुराने गाने हैं वो सारे ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं, परंतु एक गाना है जो मुझे बेहद पसंद है। क्या मैं उसे गुनगुना सकती हूँ?
2: हाँ जी, जरूर।
3: तो वो इस तरीके से है, एक

0: प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो अगला प्रश्न मेरा है वो है, आज के समय में जब व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, परिवार की जिम्मेदारियां और सामाजिक दायित्व तीनों के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती बनता जा रहा है, आपकी राय में परिवार और समाज के बीच ऐसा संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है जो न केवल व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करे बल्कि सामूहिक हितों को भी बनाए रखे।
1: देखिए, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है। संतुलन शब्द जो है ना, वो अपने आप में बहुत ही नाजुक है। जब हमें संतुलन बनाना पड़े, चाहे वो रिश्तों में हो, खाने में हो, बातचीत में हो या समाज में हो, तो बहुत ही नाजुक कार्य है, क्योंकि जरा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ तो सब बिगड़ जाता है। अब क्योंकि परिवार और समाज दोनों का दायित्व हमारा है, तो हमने दोनों को ही समय देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर हम परिवार को ही सामाजिक कार्यों में सहभागिता दे दें तो कभी भी संतुलन नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी दूसरे से एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। ऐसे में व्यक्ति पहले अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, बाद में वो किसी और से एक उम्मीद करेगा। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए परिवार का कोई सदस्य किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बनना चाहता है। अब वो अपने कार्यालय से या अपने व्यवसाय से तो समय नहीं निकाल सकता, उसके समय के साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो अब उसको जो समाज को समय देना है वो अपने पारिवारिक समय में से ही वो समय निकालेगा, जो कि परिवार के लिए एक खिज का, एक चिढ़ का कारण बन सकता है। उसकी समाज के प्रति एक नकारात्मकता भी आ सकती है कि हमारे समय में से वो समाज को समय दे रहा है, और ऐसा होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या कर सकता है, समझदारी से काम लेते हुए वो अपने सारे परिवार के सदस्यों को उस कार्य का हिस्सा बना सकता है। उससे होगा क्या कि सारा परिवार एक साथ काम करेगा तो वो एक फैमिली टाइम स्पेंड कर पाएंगे, और जो हमारा लक्ष्य था हम उसको भी पूर्ण कर पाएंगे
0: जी।
1: लेकिन इसमें उस व्यक्ति को बहुत ही पेशेंस रखनी पड़ेगी और बहुत ही प्रेम से ये कार्य करवाना पड़ेगा, क्योंकि घर के हर सदस्य की सोच और विचारधारा अलग होती है। उसको हमें अगर अपनी विचारधारा में लाना है तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, तभी हम अभी इस कार्य को अपना पूरा कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम सबकी साझेदारी होगी उस कार्य को करने में, तो किसी को हमसे शिकायत भी नहीं रहेगी, हम साथ में समय भी व्यतीत कर पाएंगे, और जो हमारा लक्ष्य है समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का, हम वो भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
0: ये सुझाव बहुत प्रैक्टिकल और प्रेरक है। संतुलन बनाए रखना शायद आसान नहीं, लेकिन छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। संतुलन का ये विचार हमारे श्रोताओं के लिए बेहद उपयोगी रहेगा। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो मेरा अगला प्रश्न है वो है, आज की व्यस्त जीवन शैली में परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां अक्सर पीछे छूट जाती हैं। आपकी दृष्टि में क्या हम अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं जो न केवल हमारे परिवार को मजबूत बनाए बल्कि समाज के प्रति भी हमारा योगदान को बढ़ाए।
1: निश्चित तौर पर जब परिवार की बात आती है ना, तो हम किसी भी बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो कोई दैनिक बदलाव हो, चाहे हमें अपनी कोई डेली रूटीन में कोई चेंज लाना पड़े, तो हम परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन जब समाज की बारी आती है तो हम कुछ कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं कि मेरे पास तो समय का अभाव है, या फिर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या कुछ भी ABCD, हम कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं जब समाज की बात आती है। और इसकी वजह ये है कि हम समाज को ना अभी तक अपना नहीं बना पाए हैं। जब तक हम उसको अपना परिवार नहीं समझेंगे, तब तक हम उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा पाएंगे, तब तक हम उसकी किसी भी काम को करने के लिए वो डेडिकेशन हमारे अंदर आएगी ही नहीं, हम अपना योगदान उस तरीके से नहीं दे पाएंगे जैसा हम अपने परिवार के लिए देना चाहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा एक सेफ समाज बने। आज के टाइम में हम अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में क्यों डरते हैं? सबसे बड़ा कारण क्या है? समाज, कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। हमें यही डर लगता है कि हमारे बच्चे बाहर जाएंगे तो किसी गलत संगत में ना पड़ जाएं, गलत लोगों की कंपनी में आके गलत आदतें ना सीख जाएं। आप सोचिए, अगर एक सुरक्षित और प्रेम भरा समाज होगा तो क्या हम बच्चों को बाहर भेजने से डरेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम निश्चिंत होकर अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं, लेकिन ये समाज हम लोगों से बना है, ये अपने आप तो अच्छा नहीं बनेगा।
0: इसलिए हमें पहले अपने आप में बदलाव लाना चाहिए।
1: जैसा हम चाहते हैं कि समाज हो, हमें वैसे ही एक्शंस करने पड़ेंगे। जैसे बच्चों के लिए कहा जाता है ना कि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, बजाय कि वो जो सुनते हैं वो करेंगे। तो यही सबके लिए है। अगर हम चाहते हैं समाज में प्रेम फैले, सब मिलजुल के रहें, तो ये हमें अपने परिवार से शुरू करना पड़ेगा। परिवार में हम करेंगे, बच्चे देखेंगे, सीखेंगे, घर के बाकी सदस्य भी यही सीखेंगे, और फिर जब वो बाहर जाएंगे तब तक वो इनकी आदत में शुमार हो चुका होगा। तो फिर वो सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा परिवार में करते हैं, और निसंदेह फिर हमारा समाज एक शांतिपूर्ण, एक प्रेम भरा समाज बन जाएगा, जो हमें बिल्कुल अपने परिवार की तरह लगेगा। चाहे हम घर के अंदर हैं, चाहे घर के बाहर हैं, हमें एक जैसा फील होगा। हमें ये नहीं लगेगा कि हमें कुछ चीजों को जबरदस्ती फॉलो करना है, कुछ रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि वो हम सबके बनाए हुए हैं और हम सबके लिए हैं। तो वो एक इक्वालिटी आ जाएगी हर चीज के अंदर। तो ये बहुत ही एक, जैसे सत्ययुग हम जिसको कहें, वो वाला माहौल हो जाएगा। ये हमारे ही हाथ में है कि हमें कैसा समाज बनाना है,
0: क्योंकि परिवारों का समूह ही तो समाज है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, परिवारों का समूह ही समाज है, और उस पर समाज को बनाने वाले हम लोग ही हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें खुद को और अपने आने वाली जनरेशन को कैसा समाज देना है, इस देश को कैसे नागरिक देने हैं। तो हमें उसी जिम्मेदारी के साथ काम करना है इस समाज को एक अच्छा बनाने के लिए। तो उसके लिए हम छोटे छोटे दैनिक परिवर्तन कर सकते हैं, कि जैसे अगर हमें घर में या घर से बाहर सफाई रखने की आदत नहीं है तो हम शुरुआत कर सकते हैं उसकी। अगर हमें क्रोध आता है तो हम उस क्रोध पे थोड़ा काबू पा सकते हैं, घर में भी और घर के बाहर भी। बिल्कुल इतने माइनर चेंजेस हैं ये, जिनका हमें पता भी नहीं चलेगा। ना हमें इनके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, ना इनके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम देना है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे वो ऐसा असर दिखाएगा, एक ऐसा समाज बन जाएगा जिसकी हम कल्पना तो जरूर करते हैं लेकिन अभी तक हमने उसको देखा नहीं है। वो हमारी कल्पना सच में बदल जाएगी अगर हम ये छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में शामिल कर लें, और औरों को भी प्रेरित करें कि वो भी यही सब करें।
0: हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। छोटे बदलाव वाकई बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। हर किसी को अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। अब हम इस खूबसूरत बातचीत को थोड़ा संगीत से जोड़ते हैं। कविता जी, आपका पसंदीदा गाने के साथ कुछ और पल हम एक साथ बिताए, आइए सुनते हैं ये गाना।

0: अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों की जो हमारे जीवन को सरल और स्वस्थ बना सकते हैं। कविता जी, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पुराने घरेलू नुस्खे कितने प्रभावी हो सकते हैं। क्या आप हमारे साथ कोई ऐसा नुस्खा शेयर करना चाहेंगी जिसे आप खुद कभी इस्तेमाल किया हो और जो बहुत फायदेमंद साबित हुआ हो?
1: किरणी जी, अगर घरेलू नुस्खों की बात करें तो जो हमारी रसोई है ना, वो खजाना है नुस्खों का। उसमें आपको अधिकतर हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा। वो तो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो हमें एकदम से आराम देती है। जो घरेलू नुस्खे हैं वो थोड़ा स्लो आराम देते हैं, लेकिन उनका फायदा ये है कि उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो अगर हमारी रसोई के अंदर आपको हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा। अब आजकल जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, अक्सर हमें खांसी की शिकायत हो जाती है, तो मैं आपसे एक छोटा सा नुस्खा शेयर करूंगी जो जिसके लिए ना आपको कोई एक्स्ट्रा सामान लाने की जरूरत है, ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत है। इसके लिए हमें केवल दो चीजों की जरूरत है, एक है हल्दी और एक गुड़, जो बड़ी आसानी से हम सबकी पाकशाला में मिल जाता है। तो आपने करना क्या है, बराबर मात्रा में हल्दी और गुड़ लेकर अच्छे से मिला लेना है और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। गुड़ क्योंकि मीठा स्वाद होता है तो इसको बच्चे बड़े हर कोई ले सकता है। जब भी खांसी हो इस गोली को, इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर इसको मुंह में रखें और चूसते रहें, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं तो इनका कोई नुकसान भी नहीं है। तो आप इसको दिन में 3-4 बार भी ले सकते हैं। और छोटे बच्चे हैं, अगर वो नहीं लेते तो आप उनको रैपर में लपेट के टॉफी की फॉर्म में भी उनको दे सकते हैं। उससे क्या होगा, डबल फायदा होगा, उनको टॉफी का स्वाद भी मिल जाएगा और उनकी खांसी में भी आराम आ जाएगा।
0: बहुत अच्छा नुस्खा, क्योंकि हल्दी जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। ये कई बीमारियों को जैसे कैंसर तक को हल्दी ठीक करती है। कविता जी, ये नुस्खा तो बिल्कुल ही शानदार है। यहाँ हमें याद दिलाता है कि पुराने समय के इन छोटे छोटे उपायों में कितनी ताकत होती है। अब इन चमत्कारी नुस्खों के बीच एक और चमत्कारी चीज है, वो है संगीत। तो क्यों ना हम इस जानकारी पूर्ण पल को और भी खास बनाने के लिए आपके पसंदीदा गाने के साथ इसे और भी खूबसूरत बनाएं।
1: गाने तो बहुत हैं, लेकिन हम हर पल की कद्र नहीं करते। एक गाना है

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर परिवार। अब इस कार्यक्रम का अंतिम भाग, अब हम बात करेंगे एक ऐसी रेसिपी के बारे में जो न सिर्फ स्वादिष्ट हो बल्कि पौष्टिक भी हो। आपने हमें बताया कि आपको ऐसे व्यंजन पसंद है जो सेहत के लिए अच्छे हैं और साथ ही खाने में भी मजेदार है। क्या आप हमें अपनी पसंदीदा पौष्टिक और स्वादिष्ट रेसिपी के बारे में बताना चाहेंगे?
1: जरूर किरणी जी, मुझे कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है और मैं कुछ कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं बच्चों को हेल्दी खिलाऊं। सिर्फ बच्चों को नहीं, घर के सभी सदस्यों को हेल्दी भोजन खिलाऊं जिसमें उनको पौष्टिकता मिले और बाहर से बनी चीजों से उनका जो एक अट्रैक्शन है वो कम हो जाए। मीठे की क्रेविंग अक्सर हम सबको रहती है, खाना खाने के बाद मन करता है कुछ मीठा खाएं, लेकिन आजकल क्योंकि सब कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो हमें ये डर रहता है कि हमने इतनी शुगर कंज्यूम कर ली है, अगर हम क्रीम की फॉर्म में लेते हैं तो हमने इतना मीठा खा लिया है। तो आज एक रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी गिल्ट फ्री है, आप उसको जी भर के खा सकते हैं, ना आपको एक्स्ट्रा फैट मिलेगा उससे, ना एक्स्ट्रा शुगर मिलेगी और हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं कि आपको रेसिपी सुन के ही समझ में आ जाएगा। रेसिपी का नाम तो बड़ा कॉमन है, वो है फ्रूट क्रीम, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अलग हैं। अक्सर फ्रूट क्रीम हम फ्रूट्स क्रीम और उसमें मीठा कुछ भी फॉर्म में, चीनी कुछ भी डाल के हम उसको बनाते हैं, लेकिन जो हमारी रेसिपी है इसके अंदर आप फ्रूट्स लीजिएगा अपनी चॉइस के, उनको बारीक चॉप कर लीजिए। क्रीम की जगह यहाँ पर हम डालेंगे 2-3 चम्मच गाढ़ा दही। दही के अंदर ना तो फैट होता है ना कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सारे इसके जितने बेनिफिट्स हैं दही के वो हम सब जानते हैं। और साथ में वैसे तो फ्रूट्स में अपना नेचुरल तौर पे काफी मीठा होता है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ी सी मीठे की जरूरत है तो आप इसमें 1/2 चम्मच हनी डाल सकते हैं या फिर 1/2 चम्मच शक्कर डाल सकते हैं जो चीनी के मुकाबले कम नुकसानदेह है। आप इसको खा के देखिए और यकीन मानिए कि बच्चे जल्दी से नहीं बता पाएंगे कि ये आपने क्रीम में नहीं बल्कि दही में बनाया है। और फ्रूट्स होने की वजह से पौष्टिक तो है ही है और इतनी फिलिंग रेसिपी है ये, अगर आप इसका एक बोल ब्रेकफास्ट में खा लें तो आई थिंक आपकी ब्रेकफास्ट की नीड को ये एकदम से कंप्लीट कर देता है। आप किसी भी टाइम इसको खा सकते हैं और अच्छा फिलिंग और टेस्टी और गिल्ट फ्री रेसिपी है ये। तो मेरी सलाह है कि आप सब इसे जरूर ट्राई करें। जो बच्चे दही नहीं खाते या फ्रूट नहीं खाते उनको खिलाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है।
0: आपकी ये रेसिपी न केवल स्वादिष्ट बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहतरीन लग रही है। हम सबको यकीन है कि ये डिश घर में हर किसी को खुश कर देगी। कविता जी, इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस विचारशील चर्चा से श्रोताओं ने भी कुछ नया सीखा होगा। जीवन के इस सफर में हम सब मिलकर एक सशक्त परिवार और समाज बना सकते हैं। क्यों ना हम सुने आपका एक और पसंदीदा गाना जो हमेशा आपके दिल के करीब रहता है। इस गाने के साथ हमें वो खास एहसास मिलेगा जो इस पल को और भी यादगार बना देगा।
1: मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ रेडियो वितस्ता का, जो अंबाला कैंट का अपना रेडियो स्टेशन है। मुझे लगता है इस रेडियो स्टेशन के जरिए अंबाला के लोगों को बहुत ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा, वो अपने विचार लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे और तो और वो अपने व्यवसाय को और अपनी और विचारधारा को लोगों तक पहुंचा पाएंगे इसके जरिए। भारत जी, किरणी जी का ये बहुत बड़ा तोहफा है अंबाला कैंट को, जिसके जरिए अंबाला के लोग आपस में जुड़ जाएंगे और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। रेडियो वितस्ता अंबाला का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कार्यक्रम के अंत में हमारा संदेश है, कभी रिश्तों में बसी होती है एक ऐसी खामोशी जो परिवार और समाज को जोड़ने की होती है एक कोशिश। जहां अपनों का साथ होता है वहां ताकत का एहसास होता है। समाज भी उस शक्ति से महकता है जब हर दिल में प्यार का एहसास होता है। रिश्तों के उस प्यारे सागर में हर व्यक्ति एक लहर है। साथ चलने से ही हम समाज को समझते हैं और संवारते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 6। आज के हमारे आमंत्रित मेहमान थे श्रीमती कविता अग्रवाल। आज का विषय था परिवार और समाज। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान, लेकर आया हूं कहानियों का सिलसिला। आपके लिए जो कहानी लाया हूं, उस कहानी का शीर्षक है परिवार में सहयोग और सम्मान की शक्ति। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी, माता पिता और उनके बच्चे थे। परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी, लेकिन सभी एक दूसरे का सम्मान करते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। गांव के तालाब का पानी सूखने लगा था और गांव के लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि यह पानी उनके खेतों के लिए जरूरी था। दादा ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और कहा,
1: हम सभी को मिलकर तालाब को फिर से भरने की कोशिश करनी होगी। यदि हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी।
0: सबने मिलकर काम शुरू किया। छोटे बच्चे पानी इकट्ठा कर रहे थे, महिलाएं खाना बना रही थी और पुरुष तालाब की मरम्मत कर रहे थे। परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी भूमिका निभा रहा था। काम करते हुए दादा ने कहा,
1: यह काम केवल मेहनत से नहीं होगा, हमें एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से काम करना होगा, तभी हम सफलता पा सकते हैं।
0: बहुत मेहनत के बाद तालाब फिर से भर गया और गांव के खेतों को पानी मिल गया। सभी लोग खुश थे। परिवार के हर सदस्य को समझ में आ गया कि यदि हम एक दूसरे का सम्मान करें और मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार का प्रेम, सम्मान और सहयोग जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार में एकता और प्यार से ही हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। माता पिता का बलिदान और बच्चों का सम्मान दोनों ही परिवार की नींव होते हैं। यही परिवार के असली मूल्य हैं, जो हमें जीवन में सफलता और खुशी दिलाते हैं।

अगर आपके पास भी कोई मौलिक कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर 7056413010 पर। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो मैं उस कहानी को अपनी आवाज़ देकर श्रोताओं तक पहुंचाऊंगा। मिलता हूं एक और कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहे, खुशहाल रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। लघु कथाओं की श्रृंखला में अक्सर आपको मैं लघु कथाएं ही सुनाता हूं, लेकिन आज चेतावनी दे रहा हूं। और ये जो चेतावनी है ना, इसकी रचना की है आयान पटेल ने।

दो बातों पर जरा नजर डालिए कि 12,000 करोड़ रुपए की मलकियत वाले रेमंड ग्रुप के मालिक विजयपत सिंह हानिया पैदल हो गए, बेटे ने पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया। और दूसरी खबर, करोड़ों रुपए के फ्लैट्स की मालकिन आशा साहनी का मुंबई में उनके फ्लैट में कंकाल मिला। विजयपत सिंघानिया और आशा साहनी दोनों ही अपने बेटों को अपनी दुनिया समझते थे। पढ़ा लिखा कर योग्य बनाकर उन्हें अपने से भी ज्यादा कामयाबी की बुलंदी पर देखना चाहते थे। ये तो हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि अपनी संतान हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। विजयपत सिंघानिया का भी यही सपना रहा होगा। उन्होंने देखा भी था कि उनका बेटा उनकी विरासत संभाले, उनके कारोबार को और भी ऊंचाइयों पर ले जाए। आशा साहनी और विजयपत सिंघानिया दोनों की इच्छा पूरी हो गई। आशा का बेटा विदेश में आलीशान जिंदगी जीने लगा और सिंघानिया के बेटे गौतम ने उनका कारोबार संभाल लिया। तो फिर चूक कहां गए दोनों? क्यों आशा साहनी कंकाल बन गई? क्यों विजयपत सिंघानिया 78 साल की उम्र में सड़क पर आ गए? मुकेश अंबानी के राजमहल से भी ऊंचा जेके हाउस बनवाया था, लेकिन अब किराए के फ्लैट में रहने पर मजबूर है। तो क्या दोषी सिर्फ उनके बच्चे हैं? अब जरा जिंदगी के क्रम पर नजर डालें। बचपन में ढेर सारे नाते रिश्तेदार, ढेर सारे दोस्त, ढेर सारे खेल और ढेर सारे खिलौने। थोड़े बड़े हुए तो पाबंदियां शुरू। जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी, कामयाबी का फितूर, आंखों में ढेर सारे सपने। कामयाबी मिली, सपने पूरे हुए, आलीशान जिंदगी मिली, फिर अपना घर, अपना निजी परिवार, हम दो, हमारा एक, किसी और की एंट्री बैन, दोस्त नाते रिश्तेदार सब छूट गए। अरे यही तो है शहरी जिंदगी। दो पड़ोसी बरसों से साथ रहते हैं, लेकिन नाम तक नहीं जानते एक दूसरे का। क्यों जाने, क्या मतलब है, हम क्यों पूछें? फिर एक तरह के डायलॉग्स, हम लोग तो बच्चों के लिए ही जी रहे हैं। मेरी नजर में ये दुनिया का सबसे खतरनाक डायलॉग है कि हम तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। बस सब सही रास्ते पर लग जाएं। अगर ये सही है तो फिर बच्चों के कामयाब होने के बाद आपके जीने की जरूरत ही क्या है? यही तो आप चाहते थे ना, कि बच्चे कामयाब हो जाएं। कहीं ये हिडन एजेंडा तो नहीं था कि बच्चे कामयाब होंगे तो उनके साथ बुढ़ापे में हम लोग मौज मारेंगे? अगर नहीं तो फिर आशा साहनी और विजयपत सिंघानिया को शिकायत कैसी? दोनों के बच्चे कामयाब हैं, दोनों अपने बच्चों के लिए जिए, तो फिर अब उनका काम खत्म हो गया, जीने की जरूरत ही क्या है? आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन ये जिंदगी अनमोल है प्यारे। सबसे पहले अपने लिए जीना सीखिए। जंगल में हिरन से लेकर भेड़िए तक झुंड बना लेते हैं, लेकिन इंसान क्यों अकेला रहना चाहता है? गरीबी से ज्यादा अकेलापन तो अमीरी देती है। क्यों जवानी के दोस्त बढ़ती उम्र के साथ छूटते जाते हैं, नाते रिश्तेदार सिमटते जाते हैं? करोड़ों के फ्लैट की मालकिन आशा साहनी के साथ उसकी ननद हो जाई जेठ जेठानी के बच्चे पढ़ सकते थे, क्यों खुद को अपने बेटे तक सीमित कर लिया? सही उम्र में क्यों नहीं सोचा कि बेटा अगर नालायक निकल गया तो कैसे जिएंगे? जब दम रहेगा दौलत रहेगी, तब सामाजिक सरोकार टूटे रहेंगे। ऐसे में उम्र थकने पर अकेलापन तो हासिल ही होगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा भय है अकेलापन। व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि के सहारे जिंदगी नहीं कटने वाली। जीना है तो घर से निकलना होगा, रिश्ते बनाने होंगे, दोस्ती गांठनी होगी, पड़ोसियों से बातचीत करनी होगी। आज के फ्लैट कल्चर वाले महानगरीय जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि खुदा ना खास्ता मौत हो जाती है ना, तो कोई कंधा देने वाले चार लोगों का इंतजाम भी नहीं होता। जिन पड़ोसियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है ना, जिन्हें कभी आपने अपने घर पर नहीं बुलाया, बोला आपको घाट तक पहुंचाने क्यों जाएंगे? याद कीजिए दो फिल्मों को, एक अवतार और दूसरी बागमा।
बेटों से बेदखल होकर अगर जिंदगी दोबारा इंसान को खड़ा करती है ना, तो उसके पीछे वजह होती है। और इन दो फिल्मों में भी दो वजह थी। एक तो राजेश खन्ना यानी अवतार के दोस्त थे, दूसरे एक वफादार नौकर था जिसे अवतार ने अपने बेटों की तरह पाला था। वक्त पड़ने पर आखिर यही लोग काम आए ना। और बागमा के राज मल्होत्रा यानी अमिताभ बच्चन बेटों से बेइज्जत हुए, लेकिन दूसरी पारी में बेटों से बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, क्योंकि उन्होंने एक अनाथ बच्चे सलमान खान को अपने बेटे की तरह पाला था। उन्हें मोटा भाई कहने वाले परेश रावल थे, नए दौर में नई पीढ़ी से जुड़े रहने की कुव्वत थी। विजयपत सिंघानिया के बाद सब कुछ वैसे भी गौतम सिंघानिया का ही होने वाला था, तो फिर क्यों जीता जी सब कुछ बेटे को सौंप दिया? क्यों संतान की मोहब्बत में भूल गए कि इंसान की फितरत किसी वक्त भी बदल सकती है? जो गलती विजयपत सिंघानिया ने की, आशा साहनी ने की, वो आप मत कीजिएगा। रिश्तों और दोस्ती की बागवानी को सींचते रहिए। ये जिंदगी आपकी है, बच्चों की बजाय पहले खुद के लिए जिंदा रहिए। अरे आप जिंदा रहेंगे तो बच्चे जिंदा रहेंगे ना। अपेक्षा किसी से मत कीजिए, क्योंकि अपेक्षा ही अक्सर दुख देती है।

चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, इतनी निर्भरता ठीक नहीं, क्योंकि मौसम और नियत इन दोनों को बदलते देर नहीं लगती।

करके सामने आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब कॉन्शियसनेस भी डिसॉल्व हो जाता है तो बचता क्या है, बचता वो शून्य है, बचती वो एम्प्टीनेस है। और उस एम्प्टीनेस में ये भूर वो असह तीनों जो कॉस्मिक प्लेन्स हैं, ये तीनों के तीनों उस एम्प्टीनेस में, उस शून्य में खत्म हो जाते हैं। अगर आप आज साइंस भी देखेंगे तो न्यूरोसाइंस हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि कॉन्शियसनेस जो है वो ब्रेन का एक आउटकम है, लेकिन जो लल कहती है उसके कहने के अनुसार कॉन्शियसनेस ब्रेन का आउटकम नहीं है, बल्कि ब्रेन कॉन्शियसनेस का ही एक आउटकम है, ब्रेन रिसीवर है, ब्रेन रिफ्लेक्टर है उस कॉन्शियसनेस का। जैसे चंद्रमा जो है वो बिना सूर्य की लाइट के चमक नहीं सकता, वैसे ही हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो बिना उस अवेयरनेस के फंक्शन नहीं कर सकती। यानी जैसे जैसे अवेयरनेस अपना विस्तार करती है, जैसे जैसे चित्त का विस्तार होता है, उस चित्त के विस्तार के साथ साथ ही मैं उस नीचे के प्लेन से ऊपर के प्लेन्स की ओर मुड़ना शुरू हो जाता हूँ। और एक समय ऐसा आता है जब मुझे फिजिकल लाइट, जब मुझे फिजिकल अवेयरनेस से परे हट के मुझे उस कॉन्शियस अवेयरनेस, उस कॉस्मिक अवेयरनेस की ओर लेके जाता है, और उस कॉस्मिक अवेयरनेस से भी जब मैं आगे बढ़ जाता हूँ तो मैं एक अल्टीमेट शून्य में पहुंच जाता हूँ, जहां मुझे किसी लाइट की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा होगा अगर सूर्य की लाइट खत्म हो जाए तो चंद्रमा की लाइट से हम देखते हैं, अगर चंद्रमा की लाइट अंधकार हो जाए तो हम मन की आंखों से देखते हैं, लेकिन जब मन की आंखें भी चली जाए तो फिर वहां शून्य ही बचता है। उस अंधकार में बस सिर्फ वही एक कॉस्मिक साउंड, वो फील्ड ऑफ इनफिनाइट पोटेंशियल, वही बच जाता है, और वही शिव है।

वास्तव में जीवन चलना है, ढलना है, जलना है, रूहों का सफर है, इनके साथ जन्म जन्म के रिश्ते बंधे हैं। कोई चला गया तो कोई जाने की तैयारी में है। समा है 100 बरस का, पर पल भर की खबर नहीं।

क्यों तुम याद आते हो अक्सर इस खामोशी में। जमाने बीत गए, बदलते रहे मौसम, चांदनी रातों में चिनारों की ठंडी छांव तले आंखों में बसते हैं ख्वाब, और कभी इन ख्वाबों की ताबीर हुआ करते थे आप, पर बिछड़ते इन मौसमों के संग ख्वाब भी टूट गए और बिखर गई चांदनी।

पंछियों की टोलियां रवा है अपने सफर पे, और दौराने सफर अपनी परवाज लिए आकाश की बुलंदियों को छूना ही ये अपना लक्ष्य मानते हैं। इनके लिए सरहदें कोई मायने नहीं रखते हैं, इनको बस उड़ने से मतलब है। बादलों में गुम हो जाना शायद इनका मकसद रहता है। फिर धीरे धीरे ये अपना सफर तय कर लौट आते ही जमीन पर इन पीले फूलों के खेतों में शबनमी बूंदों से नहा लेते हैं।

जाना है फलक पर अब, पर मिलोगी शायद तुम वहां, धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर। धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर, और चाहती ही बेअसर। अब यहां प्यार चुभता है क्योंकि फासले ही दरमियां, तभी मोहब्बत बेमाने है। सुरीली यादें ही जावेदा जो बह जाती हैं अक्सर मेरे साथ इन पीले पानी।

चांदनी रातों के बाद एक ऐसी ही सुबह का इंतजार रहता है जो मेरे लिए गुलाबी सुबह बन जाए। आओ, आओ तुम्हें इन बर्फीली हवाओं का एहसास कराएं। चल मेरे साथ कोहसारों के उस पार जहां पल भर के लिए अब मर जाए।

दोस्त, आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब आज के लिए बस इतना ही, चाहेंगे आपसे इजाजत।

0: پیش ہے پروگرام وتستہ گیت مالا ایپیسوڈ 16 جو مبنی ہے غزل مجموعہ خوابوں کے درمیان پر، منصف جناب عاقب جاوید، تعاون کرشنا اور نینا کا، ریکارڈ ایڈٹ ہدایت اور پیشکش بھارت سوپوری کی۔
1: मित्रों, मन में बहुत दिनों तक अंतर युद्ध छिड़ा रहा, क्या मुझे अपनी रचनाओं को अभी लेकर आप सब तक आना चाहिए कि नहीं। फिर मैंने अपने दिल की बात सुनी और पाठकों तक अपनी गजलें लेकर इस उम्मीद पर आया कि आप सभी की मोहब्बत और दुआएं मिलेंगी। बचपन से ही जिंदगी की जदोजहद में लगा रहा और मैंने जो ख्वाब देखे वो ख्वाब हमेशा मुझे पीछे छोड़ के खुद आगे निकलते रहे हैं। उन्हीं ख्वाबों में एक बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौकीन बालक कब कविताएं गजलें लिखने लगा पता ही नहीं चला। मेरा लिखने का शौक एक लेखक गजलकार बनने का उन्हीं ख्वाबों के बीच, ख्वाबों के दरमियां को आप सब तक ले आया हूं। ये गजलों का गुलदस्ता आप तक पहुंचाने में जिन मित्रों ने सहयोग दिया है उनमें सबसे पहले मेरे गजल गुरु, जिन्होंने गजल की बारीकियों से मुझे रूबरू करवाया, श्री विजय स्वर्णकार साहब। मुझे प्रोत्साहित करने वाले, मेरे अंदर ऊर्जा का संचार करने वाले श्री अब्दुल इरशाद जी। वर्तमान में मेरी रचनाओं को किताब की शक्ल में अमली जामा पहनाने का काम मेरे गुरु श्री धर्मराज देशराज सर, सीहोर मध्य प्रदेश, जिनके बगैर यह किताब आप सभी के सामने न आ पाती। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, लेके आया हूं वितस्ता गीत माला एपिसोड 16। आज का ये एपिसोड आधारित है बांदा उत्तर प्रदेश से जनाब आकिब जावेद की गजल संग्रह है ख्वाबों के दरमियां पर। इस आज के सफर में हम आपको जनाब आकिब जावेद से रूबरू कराएंगे उनके लिखे गजलों के माध्यम से। आपको सुनाएंगे उनके लिखे कुछ चुनिंदा गजलें और सुनाएंगे उसके साथ जुड़ी गीत और गजलें। तो बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम में और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम भी पसंद आएगा। तो करते हैं शुरुआत गजलों का सिलसिला जो सुनी नहीं जाती, दिल से महसूस की जाती है। और गजलों का आज का ये संग्रह है ख्वाबों के दरमियां। आकिब जावेद लिखते हैं, बोझ गम का उठा नहीं सकता, दर्द क्या है बता नहीं सकता, इश्क का रोग जो लगा मुझको चाह कर भी छिपा नहीं सकता। जिंदगी है तो गम मिलेंगे ही, हौसले पर डिगा नहीं सकता। खूब दौलत कमाई है गम की, मुफलिसी को बुला नहीं सकता। जीना मरना मेरा यही यारो, मैं वतन छोड़ जा नहीं सकता। हिजर में उनके रात भर रोया, हाले दिल भी सुना नहीं सकता। प्यार अनमोल है हिफाजत कर, वरना खुद को बचा नहीं सकता, वरना खुद को बचा नहीं सकता। जनाब आकिब जावेद एक और गजल में लिखते हैं, आंधियों में अगर गुल खिला रह गया, यूं लगा सुर्ख मौसम धरा रह गया, रहमतें जो लुटाता है हर दम यहां, उसके दर पे जो आया खड़ा रह गया। मिल गया है मुझे जब से मेरा सनम, ये जमाना मुझे देखता रह गया। आंधियां नफरतों की यहां चल रही, मैं मोहब्बत यहां बांटता रह गया। कर लिया है गुजर यूं फिक्री में भी, जिस्त का यूं मेरे वाकिया रह गया। दर्द में जब किसी के नहीं साथ हो, खुद से खुद का भी क्या वास्ता रह गया। खुल रही है सिलाई मोहब्बत की भी, और आकिब रफू देखता रह गया, और आकिब रफू देखता रह गया।

0: जनाब आकिब जावेद एक और गजल में लिखते हैं, पड़ा हुआ था ये कब से सनम इधर पर्दा, उड़ा गई है हवा आज ये किधर पर्दा, तेरा मैयार नमूदार ना हो जाए कहीं, बना ले अपनी हया के लिए नजर पर्दा, है इब्तिदा ये मोहब्बत की तुम समझ लेते, बुझा बुझा सा ही रहने लगा अगर पर्दा, करार आता कहां है बिना उन्हें देखे, शरीफ इतना हो लगता है मोतबर पर्दा, उतार कर जरा अपना नकाब वो रख दे, इधर उधर भी उड़े जाए फिर ठहर पर्दा, निभा रहा था अभी साथ कल तलक वो भी, हवा चली तो हुआ है ये दर्ब दर पर्दा, निगाह हमने जहां से छुपा के रखी है, चुरा चुरा के नजर देखा था मगर पर्दा, छुपी हुई है किसी दर्दमंद की गैरत, है कीमती सा लगे हमको माल जर पर्दा, गुनाह कोई कहे हम सवाब कहते हैं, नजर से चूमते आकिब हजार घर पर्दा, नजर से चूमते आकिब हजार घर पर्दा। जनाब आकिब जावेद एक और गजल में लिखते हैं, फकीरी में भी गुजर करते डल सकोगे क्या, हसद है दिल में इससे तुम कुचल सकोगे क्या, निगाह फेर ली जिसने निकाले दिल से तुम्हें, निकल के उसकी डगर से यूं चल सकोगे क्या, थकन से चूर है मजदूर का बदन यारो, गरीब का भी मुकद्दर बदल सकोगे क्या, तमाम ठोकरें होंगी सफर के रास्ते में, किसी के डर से डगर तुम बदल सकोगे क्या, जुबां हो जहन से घर पुर असर यहां यारो, खिला के मीठा उसे तुम बदल सकोगे क्या, जलेगी शाम मोहब्बत की जिंदगी में कभी, जहां में मोम के जैसे पिघल सकोगे क्या, बनाते क्यों हो जमाने में तुम किसी का मजाक, गिरा के नजरों से आकिब संभल सकोगे क्या, गिरा के नजरों से आकिब संभल सकोगे क्या,
1: रुख से

जारी है कार्यक्रम वितस्ता गीत माला FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। आज हम आपको गजलें और कविताएं सुना रहे हैं। बांदा से जनाब आकिब जावेद के गजल संग्रह ख्वाबों के दरमियां पर। वो एक और गजल में लिखते हैं, आजकल लाचार है इस वतन का आदमी, दर्द का अखबार है इस वतन का आदमी, हौसलों से लिख रहा अपनी किस्मत आप ही खुद मुख्तार है इस वतन का आदमी। यूं तो रखता चांद की शमस्तारों की खबर, खुद से पर अज्ञार है इस वतन का आदमी। मंजिलों के खौफ में खुद का लश्कर लूटता, रास्तों का खार है इस वतन का आदमी। इस जहां के ताज में मुल्क हीरे सा मेरा, और गले का हार है इस वतन का आदमी। नाम हो सारे जमाने में अपने मुल्क का, सोचता हर बार है इस वतन का आदमी। हो गया बेजार और बेसुकून आकिब यहां, मतलब का बाजार है इस वतन का आदमी, मतलब का बाजार है इस वतन का आदमी। एक और गजल पेश है, रुख से नकाब को यूं हटाने का शुक्रिया, बदली में जो था चांद दिखाने का शुक्रिया, जो आशियां बनाया खुले आसमां को, ऐसों की यार भूख मिटाने का शुक्रिया। थे कल तलक तो बेवफा पर हैं अजीज अब, ए दिल फरेबी यार बुलाने का शुक्रिया। मसरूफ हो गए हैं जमाने में यार तुम, आवाज देके मुझको बुलाने का शुक्रिया। रहबर की बात माननी पड़ती है जो भी हो, आदाब हमको उनका बजाने का शुक्रिया। मुझको गले लगा रहे मजलूम जानकर, मुझसे ही मेरा दर्द चुराने का शुक्रिया, मुझसे ही मेरा दर्द चुराने का शुक्रिया।

जनाब आकिब जावेद एक और गजल में लिखते हैं, गरीबों को कपड़े मिठाई दिलाएं, दिवाली मनाएं, खुशियां लुटाएं, सभी अपने अपने घरों को सजाएं, ये रोशन जमीन है जहां जगमगाएं, करें नफरतों को जहां से रवाना, चलो प्यार का दीप हम भी जलाएं, सभी मिलके कंधे से कंधा मिला लें, बुराएं मिटाएं, मोहब्बत निभाएं, हंसी जिस्त की तो यही आरजू है, अंधेरे में हम सब दिया एक जलाएं, चलो आज भूखे को खाना खिला दें, किसी भूखे की भूख हम भी मिटाएं, सभी को गले से चलो अब लगा लें, गरीबों की मिलके सभी ले दुआएं, गरीबों की मिलके सभी ले दुआएं। लेता हूं एक और गजल इसी गजल संग्रह से, जिसको लिखा है जनाब आकिब जावेद ने। वो लिखते हैं, तेरी आंखों का सागर हो गया हूं, खुदा जाने ये क्यों कर हो गया हूं, किसी डाली से पत्ते की तरह टूटा, लगा घर से ही बेघर हो गया हूं, बहुत नाकाम था नाशाद था, लेकिन तेरी सोहबत से बेहतर हो गया हूं, तुम्हारी एक हंसी पर जान भी दूं मैं, तुम्हें पाकर मैं सुंदर हो गया हूं, तेरे मिलने से पहले कुछ नहीं था, तेरे मिलने से बेहतर हो गया हूं, तुम्हारे हिजर का गम भूलूं कैसे, कि दिल में जज्ब नश्तर हो गया हूं, लिया था सर्द रातों में एक बोसा, उसी पर निछावर हो गया हूं, उसी पर निछावर हो गया हूं।

लेता हूँ इस गजल संग्रह से आखिरी दो गजलें जिनको लिखा है जनाब आकिब जावेद ने। वो लिखते हैं, आपके दिल में ठिकाना कर लिया, बेवजह ही आना जाना कर लिया, मेरी गजलों की तरह आते नजर, मुझको क्यों अपना दीवाना कर लिया। उनकी आंखों में मोहब्बत देखकर हमने जीने का बहाना कर लिया, खूब खेला वो मेरे जज्बातों से, खत्म हर रिश्ता पुराना कर लिया। जिंदगी में प्यार का सरमाया था, खाली हमने ये खजाना कर लिया, जो सितम करते रहे मजलूम पर, अब लहद में आशियाना कर लिया। बाग खारों का यहां आकिब बहुत, पर गुलों ने सब सुहाना कर लिया, पर गुलों ने सब सुहाना कर लिया। आप सबकी नजर है इस कार्यक्रम की आखिरी गजल, जनाब आकिब जावेद लिखते हैं, प्यार का वादा निभाते रह गए, ऐब उनके हम छिपाते रह गए, दास्तां है सर्द रातों की जो हम गर्म सांसों को सुनाते रह गए, छोड़ दी है वो गली जिसमें थे तुम, हम नई दुनिया बसाते रह गए, सो रहे थे खूब थक कर जो हमें ख्वाब में आकर जगाते रह गए, ढूंढ लाएगी तुझे तन्हाई भी दिल की बातें हम सुनाते रह गए, यूं शरारत कर रहा है ये जहां, हम अन्ना अपनी बचाते रह गए, उम्र भर का साथ चाहा है मगर रूठे रब को हम मनाते रह गए, रूठे रब को हम मनाते रह गए।

ये था आज का वितस्ता गीतमाला एपिसोड 16, जो आधारित था गजल संग्रह ख्वाबों के दरमियां पर, जिसको सुनहरे शब्दों से सजाया है बांदा उत्तर प्रदेश के युवा लेखक जनाब आकिब जावेद साहब। आकिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये गजल संग्रह भेजने के लिए। ये कार्यक्रम हमारी ओर से एक सादर भेंट। उम्मीद है आपको आज का ये वितस्ता गीत माला कार्यक्रम पसंद आया होगा, और यही उम्मीद सभी श्रोताओं से भी है। आप सभी अपना फीडबैक भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010 पर, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं radiovitasta@gmail.com पर। इन्हीं भावनाओं के साथ अब अपने रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। मिलता हूं अगले कार्यक्रम में, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम विदस्ता गीतमाला एपिसोड 16, जो मबनी था जनाब आकिब जावेद के गजल मजमुआ खाबू के दरमियां पर। तावन कृष्णा और नैना, रिकॉर्ड एडिट हिदायत और पेश किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 8। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे RJ किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन भारत सोपोरी का।
0: नमस्कार, सुस्वागतम। आप सुन रहे हैं सरगम का नया अंक। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी, आपका स्वागत करती हूं इस खास प्रोग्राम में। आज के इस बेहतरीन सफर में हम आपको ले चलेंगे पुराने गानों की याद में। कार्यक्रम की पहली पेशकश है फिल्म सहरा के गाने से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और जिसके बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और म्यूजिक दिया है रामलाल ने।

लीजिए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत, जिसे संगीत दिया है रोशन ने और फिल्म ताजमहल से।

लीजिए अब सुनते हैं रवि का संगीतबद्ध गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने फिल्म धोकलिया से, और उसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

0: अब पेश है फिल्म तलाश का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक दिया है SD बर्मन ने।
1: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।

0: फिर से तो फरमान।
1: अगले गाने के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म इंतकाम से।

लीजिए अब सुनते हैं जाने अनजाने फिल्म का गाना, गुलशन बावरा का लिखा हुआ, संगीतकार शंकर जयकिशन और आवाजें दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है रविंदर जैन, राजकवि और इंद्रजीत सिंह का लिखा गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने फिल्म चोर मचाए शोर से, जिसको संगीत से सजाया है रविंदर जैन ने।

अगली पेशकश है साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गाना, जिसके संगीतकार है खयाम और जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने फिल्म कभी कभी से।

अब पेश है फिल्म जमाने को दिखाना है का गाना, जिसके संगीतकार है आरडी बर्मन, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और अपनी आवाज से सजाया है शैलेंद्र सिंह ने।

अगला गाना है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार है वर्मा मलिक, फिल्म जानी दुश्मन से।

अब आपको सुनाते हैं फिल्म बैरा का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने फिल्म बैराग से।

खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: आशिक मेरा नाम है,
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ, आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।
1: कैसे भी हो तुम, कैसे भी हो, कैसे भी हो, हम खुशी

0: सभी श्रोताओं के नजर आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत, जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, जिसे संगीत दिया है रवि ने, गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, फिल्म एक महल हो सपनों का। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: एक महल हो

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 8। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन था भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति। यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।
1: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
2: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta Hamsafar Zindagi Ka Ambala Kent's first community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting Government of India.
3: Tochu Bozan FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी हूँ।
4: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
2: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउण जो
1: रेडियो वितस्ता
2: असले पौन पटाके
1: सुन मेरे दिलदारा 90.0 मेगा

सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत। आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। आज के हमारे मेहमान है श्रीमती हरजीत कौर लांबा, प्रस्तुतकर्ता आजय किरनी।
1: कार्यक्रम घर परिवार के आज के अंक में मैं किरनी सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं और हरजीत लांबा जी आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: सबसे पहले सभी सुनने वाले श्रोता को मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार और किरनी जी आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस कार्यक्रम में आए। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले तो घर में खुशियों के फूल खिले। एक नारी अकेले ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आप समझ ही गए होंगे कि आज चर्चा का विषय है नारी। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ हरजीत जी, आप बेटियों यानी नारी की व्याख्या किन शब्दों में करोगे?
2: देखो, जब बेटी का जन्म होता है तो परिवार में बहुत खुशी का माहौल होता है। बेटी के बिना कोई परिवार पूरा नहीं होता। बहुत खुशनसीब हैं वो माता पिता जिनके परिवार में बेटी होती है। आपकी बेटी हमेशा आपकी स्थिति को समझती है। अच्छे बुरे का बेटियां परिवार के लिए उपहार की तरह होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक बेटी चाहते हैं ताकि उनका परिवार पूरा हो सके। कई लोग बेटी को बोझ समझते हैं लेकिन ये सच नहीं है। बेटियां उनके लिए वरदान होती हैं। यही बेटी नारी की भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ, जो बेटी है वो घर को स्वर्ग बनाती है। हर एक चाहता है कि उसकी एक बेटी हो। बेटी समाज का मूल आधार है तथा ईश्वर द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत और अमूल्य रचना है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नारी समाज में अनेक रिश्ते निभाती है, चाहे वो बहन का हो, माँ का हो, पत्नी का हो, दादी का हो, आपका क्या मानना है? कृपया विस्तार में बताइए।
2: परिवार में बेटी और बेटे का समान रूप से महत्व होता है। वर्तमान समाज में भेदभाव को मिटाकर बेटियों को महत्व देना चाहिए। बेटियां ही घर की संचालन शक्ति होती हैं। माँ, बहन एवं पत्नी के रूप में उनका सर्वांग जीवन त्याग एवं सेवा की लंबी गाथा है, उसका बहुत वर्णन है।
1: जी हाँ, एक नारी जो है बहन का, माँ का, पत्नी का, दादी का, सारे रिश्ते बखूबी और बहुत ही खूबसूरती से निभाती है। अब हरजीत जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आज की नारी है, नारी का वर्तमान जो स्वरूप है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
2: देखो, नारी समाज में भी सबसे आगे आई है। आज बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर बेटियां विराजमान हैं। पुराने समय में लड़कियां बहुत समझी जाती थी लेकिन आज का युग नारी युग है।
1: जी हाँ, मेरी राय भी यही है। मेरा मानना ये है कि जो वर्तमान की नारी है वो आर्थिक की दृष्टि से आजाद हो, शिक्षित हो, पुरुष की दास्ता से मुक्त हो, दोनों यानी कि एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे का सम्मान करते हुए परिवार और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हाँ जी,
2: देखो किरणी जी, हमारे समाज में जागरूकता आई है, भ्रूण हत्या अब कम हुई है, गवर्नमेंट ने भी कानून जो है बना दिए हैं, बहुत सख्त कानून बनाए हैं कि बेटियों को जन्म से पहले आप भ्रूण हत्या नहीं कर सकते हैं और रेशो में भी लड़कियां जो हैं वो लड़कों के बराबर हो गई हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। बेटी बोझ नहीं सम्मान है, घर की प्यारी सी मुस्कान है, आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है।
1: जी हाँ, इसीलिए हम सबको एक नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि नारी से ही जीवन है। जी, आपकी कविता से मुझे भी दो लाइनें याद आ गई। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंधी थी दुनिया सारी, हर पथ को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। अब हम आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनाएंगे। आप बताओ आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
2: उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार कराते। किरण जी मुझे ये बहुत पसंद
1: है। चलो आपके पसंद का ये गाना हो जाए। जी हाँ, ये गाना बहुत अच्छा है और इसकी जो पहली दो लाइनें हैं जो कश्मीरी में है वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि भाषा से खानो मजगूर दुमे रक्षत मैंने बह जानो। अब सब सुनने वालों को और आपको हम ये वाला गाना सुनाते हैं।
2: वाह खूब।

0: बहुत ही मनमोहक गाना था, हमने और लिस्नर्स ने सुना। आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आज के मौसम के हिसाब से आप कौन सी रेसिपी श्रोताओं को आज बताने वाले हैं?
1: आज मैं आपको फ्रूट क्रीम बनाना सिखाऊंगी। ठंडा हम खाने को भी मन करता है और पौष्टिक भी है। आजकल किरणी जी बच्चे जो हैं वो फल फ्रूट कुछ चीजें नहीं खाते हैं, इसलिए उनको खिलाना पड़ता है। तो छोटी सी रेसिपी है, उसमें घर में फ्रूट पड़े रहते हैं, जैसे सेब, अनार, केला, कोई भी आप ले सकते हो। उनको छोटे छोटे काट कर बाउल में डाल लो, घर की मलाई पड़ी होती है उसको फेंट लो, अगर नहीं है करीम ले आओ, उसमें शहद मिलाकर उनको मिक्स करके आप बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ, ये व्रत में भी खा सकते हो आप।
0: जी हाँ, बहुत ही बढ़िया रेसिपी और कम समय में बनने वाली, मैं भी आज ही ट्राई करूंगी। अब आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए।
1: तो क्यों ना वो लगाया जाए, अपने पुराने टाइम का गाना, ओ बाबुल प्यारे।
0: जी हाँ, आपके लिए और अपने श्रोताओं के लिए पेश है बाबुल प्यारे।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hamsafar Zindagi Ka.
1: आप कोई घरेलू नुस्खा बताए जो सबके लिए कारगर हो।
2: हाँ जी किरणी जी, आजकल बारिश का मौसम है, तो कुछ ऐसा बताया जाए कि स्किन के लिए, खुजली के लिए, जैसे नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर मिला के लगाएं कि उससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा।
1: जी हाँ, हमारे श्रोताओं को कुछ तो इससे फायदा मिलेगा। मैं भी एक घरेलू नुस्खा आपके साथ और अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है हल्दी। हल्दी तो हर एक किचन में मिलती है। अगर शरीर के किसी हिस्से में चोट लगे तो गर्म दूध में हल्की फुल्की हल्दी डालकर पिए। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो मसल्स में आई सूजन में राहत दिलाती है। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। हमारे ये दोनों घरेलू नुस्खों से शायद हमारे श्रोताओं को कुछ हेल्प मिले।

0: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: प्रोग्राम के अंतिम हिस्से में अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप आज अंबाला कैंट के पहले FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आए हैं, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए।
2: हमें बहुत खुशी है कि अंबाला कैंट को अपना FM स्टेशन मिला है, जिसके माध्यम से हम सभी अंबाला वासी अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे और पहुंचा सकते हैं। मेरी दिल से दुआ है कि दिन दुगनी रात चुगनी हो। मैं हमेशा FM सुनती रहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंबाला में मेरे घर के पास FM खुल जाएगा, कि जिसको मैं बड़े मन से सुनती हूँ। अब
1: हरजीत जी, अब हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। उम्मीद है श्रोताओं को आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। अब लास्ट में आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए।
2: आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया। हमारे श्रोतागण को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद जय भारत।
1: आइए, आपको हरजीत जी के पसंदीदा गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। इसको प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। रिकॉर्ड एडिट एवं निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए रेडियो विदस्ता, सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

सुनिए बप्पी लाहिरी के दिल छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ।
3: ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਵਾ ਕਰਾਉਣ ਜੋ
2: ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ
4: ਅਸਲੇ ਪਾਉਣ ਪਟਾਕੇ
3: ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਮੈਨੂੰ
2: 90.0 ਮੈਗਾ

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विविधता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

दोस्तों बोजान एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करते थे। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर दिखा।

ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शमी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम की तलाश

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद आसमानी भी पहली बार इस फिल्म में काम कर रही थी। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो शम्मी कपूर रातों रात हीरो बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए।

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

फिल्म कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शम्मी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शम्मी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शम्मी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शम्मी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने शम्मी को बुलाकर खूब डांट पिलाते हुए कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। गीता ने उनकी ये बात खुशी खुशी मानी।

फिल्मों में अपनी दिलकश अदा के जरिए दर्शकों के दिलों पर कई दशक तक राज किया। उनके फिल्मी गाने और डायलॉग आज भी मशहूर हैं। उन्होंने फिल्मों में कई तरह के रोल अदा किए, लेकिन उनके रोमांटिक रोल आज भी फिल्मों में जीवंत लगते हैं। सन 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल उनकी कामयाब फिल्म रही। उनके अपोजिट थे आशा पारेख।

0: अरे अय्या सुकु सुकु
1: अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु।
2: रफी की आवाज उन पर सटीक बैठती थी। अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
3: कोई मुझे जंगली कहे कहने को जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे

गीता बाली का सन 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी जीवित है।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: नब्बे आशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

पेश है प्रोग्राम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 16, जो मबनी है गजल मजमुआ ख्वाबों के दरमियां पर, मुंसिफ जनाब आकिब जावेद, ताउन कृष्णा और नैना का, रिकॉर्ड एडिट हिदायत और पेशकश बारिश सपूरी की।

0: मित्रों, मन में बहुत दिनों तक अंतर युद्ध छिड़ा रहा, क्या मुझे अपनी रचनाओं को अभी लेकर आप सब तक आना चाहिए कि नहीं। फिर मैंने अपने दिल की बात सुनी और पाठकों तक अपनी गजलें लेकर इस उम्मीद पर आया कि आप सभी की मोहब्बत और दुआएं मिलेंगी। बचपन से ही जिंदगी की जदोजहद में लगा रहा और मैंने जो ख्वाब देखे वो ख्वाब हमेशा मुझे पीछे छोड़ के खुद आगे निकलते रहे हैं। उन्हीं ख्वाबों में एक बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौकीन बालक कब कविताएं गजलें लिखने लगा पता ही नहीं चला। मेरा लिखने का शौक एक लेखक गजलकार बनने का उन्हीं ख्वाबों के बीच ख्वाबों के दरमियां को आप सब तक ले आया हूं। ये गजलों का गुलदस्ता आप तक पहुंचाने में जिन मित्रों ने सहयोग दिया है उनमें सबसे पहले मेरे गजल गुरु जिन्होंने गजल की बारीकियों से मुझे रूबरू करवाया श्री विजय स्वर्णकार साहब, मुझे प्रोत्साहित करने वाले मेरे अंदर ऊर्जा का संचार करने वाले श्री अब्दुल इरशाद जी, वर्तमान में मेरी रचनाओं को किताब की शक्ल में अमली जामा पहनाने का काम मेरे गुरु श्री धर्मराज देशराज सर सीहोर मध्य प्रदेश, जिनके बगैर यह किताब आप सभी के सामने न आ पाती। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, लेके आया हूं विदस्ता गीत माला एपिसोड 16। आज का ये एपिसोड आधारित है बांदा उत्तर प्रदेश से जनाब आकिब जावेद की गजल संग्रह है ख्वाबों के दरमियान पर। इस आज के सफर में हम आपको जनाब आकिब जावेद से रूबरू कराएंगे उनके लिखे गजलों के माध्यम से, आपको सुनाएंगे उनके लिखे कुछ चुनिंदा गजलें और सुनाएंगे उसके साथ जुड़ी गीत और गजलें। तो बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम में और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम भी पसंद आएगा। तो करते हैं शुरुआत गजलों का सिलसिला जो सुनी नहीं जाती, दिल से महसूस की जाती है। और गजलों का आज का ये संग्रह है ख्वाबों के दरमियां। आकिब जावेद लिखते हैं, बोझ गम का उठा नहीं सकता, दर्द क्या है बता नहीं सकता, इश्क का रोग जो लगा मुझको चाहकर भी छिपा नहीं सकता, जिंदगी है तो गम मिलेंगे ही, हौसले पर डिगा नहीं सकता, खूब दौलत कमाई है गम की, मुफलिसी को बुला नहीं सकता, जीना मरना मेरा यही यारो, मैं वतन छोड़ जा नहीं सकता, हिजर में उनके रात भर रोया, हाले दिल भी सुना नहीं सकता, प्यार अनमोल है हिफाजत कर, वरना खुद को बचा नहीं सकता, वरना खुद को बचा नहीं सकता। जनाब आकिब जावेद एक और गजल में लिखते हैं, आंधियों में अगर गुल खिला रह गया, यूं लगा सुर्ख मौसम धरा रह गया, रहमतें जो लुटाता है हर दम यहां, उसके दर पे जो आया खड़ा रह गया, मिल गया है मुझे जब से मेरा सनम, ये जमाना मुझे देखता रह गया, आंधियां नफरतों की यहां चल रही, मैं मोहब्बत यहां बांटता रह गया, कर लिया है गुजर यूं फिक्री में भी, जिस्त का यूं मेरे वाकिया रह गया, दर्द में जब किसी के नहीं साथ हो, खुद से खुद का भी क्या वास्ता रह गया, खुल रही है सिलाई मोहब्बत की भी, और आकिब रफू देखता रह गया, और आकिब रफू देखता रह गया।
1: आपको देख कर देखता रह गया,

0: जनाब आकिब जावेद एक और गजल में लिखते हैं, पड़ा हुआ था ये कब से सनम इधर पर्दा, उड़ा गई है हवा आज ये किधर पर्दा, तेरा मैयार नमूदार ना हो जाए कहीं, बना ले अपनी हया के लिए नजर पर्दा, है इब्तिदा ये मोहब्बत की तुम समझ लेते, बुझा बुझा सा ही रहने लगा अगर पर्दा, करार आता कहां है बिना उन्हें देखे, शरीफ इतना हो लगता है मौत भर पर्दा, उतार कर जरा अपना नकाब वो रख दे, इधर उधर भी उड़े जाए फिर ठहर पर्दा, निभा रहा था अभी साथ कल तलक वो भी, हवा चली तो हुआ है ये दर बदर पर्दा, निगाह हमने जहां से छुपा के रखी है, चुरा चुरा के नजर देखा था मगर पर्दा, छुपी हुई है किसी दर्दमंद की गैरत, है कीमती सा लगे हमको माल जर पर्दा, गुनाह कोई कहे हम सवाब कहते हैं, नजर से चूमते आकिब हजार घर पर्दा, नजर से चूमते आकिब हजार घर पर्दा। जनाब आकिब जावेद एक और गजल में लिखते हैं, फकीरी में भी गुजर करते डल सकोगे क्या, हसद है दिल में इससे तुम कुचल सकोगे क्या, निगाह फेर ली जिसने निकाले दिल से तुम्हें, निकल के उसकी डगर से यूं चल सकोगे क्या, थकन से चूर है मजदूर का बदन यारो, गरीब का भी मुकद्दर बदल सकोगे क्या, तमाम ठोकरें होंगी सफर के रास्ते में, किसी के डर से डगर तुम बदल सकोगे क्या, जुबां हो जहन से घर पुर असर यहां यारो, खिला के मीठा उसे तुम बदल सकोगे क्या, जलेगी शाम मोहब्बत की जिंदगी में कभी, जहां में मोम के जैसे पिघल सकोगे क्या, बनाते क्यों हो जमाने में तुम किसी का मजाक, गिरा के नजरों से आकिब संभल सकोगे क्या, गिरा के नजरों से आकिब संभल सकोगे क्या,
1: रुख से

जारी है कार्यक्रम वितस्ता गीत माला FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। आज हम आपको गजलें और कविताएं सुना रहे हैं बांदा से जनाब आकिब जावेद के गजल संग्रह ख्वाबों के दरमियां पर। वो एक और गजल में लिखते हैं, आजकल लाचार है इस वतन का आदमी, दर्द का अखबार है इस वतन का आदमी, हौसलों से लिख रहा अपनी किस्मत आप ही खुद मुख्तार है इस वतन का आदमी। यूं तो रखता चांद की शमस्तारों की खबर, खुद से पर अज्ञार है इस वतन का आदमी। मंजिलों के खौफ में खुद का लश्कर लूटता, रास्तों का खार है इस वतन का आदमी। इस जहां के ताज में मुल्क हीरे सा मेरा, और गले का हार है इस वतन का आदमी। नाम हो सारे जमाने में अपने मुल्क का, सोचता हर बार है इस वतन का आदमी। हो गया बेजार और बेसुकून आकिब यहां, मतलब का बाजार है इस वतन का आदमी, मतलब का बाजार है इस वतन का आदमी। एक और गजल पेश है, रुख से नकाब को यूं हटाने का शुक्रिया, बदली में जो था चांद दिखाने का शुक्रिया। जो आशियां बनाया खुले आसमां को, ऐसों की यार भूख मिटाने का शुक्रिया। थे कल तलक तो बेवफा पर हैं अजीज अब, ए दिल फरेबी यार बुलाने का शुक्रिया। मसरूफ हो गए हैं जमाने में यार तुम, आवाज देके मुझको बुलाने का शुक्रिया। रहबर की बात माननी पड़ती है जो भी हो, आदाब हमको उनका बजाने का शुक्रिया। मुझको गले लगा रहे मजलूम जानकर, मुझसे ही मेरा दर्द चुराने का शुक्रिया, मुझसे ही मेरा दर्द चुराने का शुक्रिया।

जनाब आकिब जावेद एक और गजल में लिखते हैं, गरीबों को कपड़े मिठाई दिलाएं, दिवाली मनाएं, खुशियां लुटाएं, सभी अपने अपने घरों को सजाएं, ये रोशन जमीन है जहां जगमगाएं, करें नफरतों को जहां से रवाना, चलो प्यार का दीप हम भी जलाएं, सभी मिलके कंधे से कंधा मिला लें, बुराएं मिटाएं, मोहब्बत निभाएं, हंसी जिस्त की तो यही आरजू है, अंधेरे में हम सब दिया एक जलाएं, चलो आज भूखे को खाना खिला दें, किसी भूखे की भूख हम भी मिटाएं, सभी को गले से चलो अब लगा लें, गरीबों की मिलके सभी ले दुआएं, गरीबों की मिलके सभी ले दुआएं। लेता हूं एक और गजल इसी गजल संग्रह से, जिसको लिखा है जनाब आकिब जावेद ने। वो लिखते हैं, तेरी आंखों का सागर हो गया हूं, खुदा जाने ये क्यों कर हो गया हूं, किसी डाली से पत्ते की तरह टूटा, लगा घर से ही बेघर हो गया हूं, बहुत नाकाम था नाशाद था, लेकिन तेरी सोहबत से बेहतर हो गया हूं, तुम्हारी एक हंसी पर जान भी दूं मैं, तुम्हें पाकर मैं सुंदर हो गया हूं, तेरे मिलने से पहले कुछ नहीं था, तेरे मिलने से बेहतर हो गया हूं, तुम्हारे हिजर का गम भूलूं कैसे, कि दिल में जज्ब नश्तर हो गया हूं, लिया था सर्द रातों में एक बोसा, उसी पर निछावर हो गया हूं, उसी पर निछावर हो गया हूं।

लेता हूँ इस गजल संग्रह से आखिरी दो गजलें जिनको लिखा है जनाब आकिब जावेद ने। वो लिखते हैं, आपके दिल में ठिकाना कर लिया, बेवजह ही आना जाना कर लिया, मेरी गजलों की तरह आते नजर, मुझको क्यों अपना दीवाना कर लिया। उनकी आंखों में मोहब्बत देखकर हमने जीने का बहाना कर लिया, खूब खेला वो मेरे जज्बातों से, खत्म हर रिश्ता पुराना कर लिया। जिंदगी में प्यार का सरमाया था, खाली हमने ये खजाना कर लिया, जो सितम करते रहे मजलूम पर, अब लहद में आशियाना कर लिया। बाग खारों का यहां आकिब बहुत, पर गुलों ने सब सुहाना कर लिया, पर गुलों ने सब सुहाना कर लिया। आप सबकी नजर है इस कार्यक्रम की आखिरी गजल, जनाब आकिब जावेद लिखते हैं, प्यार का वादा निभाते रह गए, ऐब उनके हम छिपाते रह गए, दास्तां है सर्द रातों की जो हम गर्म सांसों को सुनाते रह गए, छोड़ दी है वो गली जिसमें थे तुम, हम नई दुनिया बसाते रह गए, सो रहे थे खूब थक कर जो हमें ख्वाब में आकर जगाते रह गए, ढूंढ लाएगी तुझे तन्हाई भी दिल की बातें हम सुनाते रह गए, यूं शरारत कर रहा है ये जहां, हम अन्ना अपनी बचाते रह गए, उम्र भर का साथ चाहा है मगर रूठे रब को हम मनाते रह गए, रूठे रब को हम मनाते रह गए।

ये था आज का वितस्ता गीतमाला एपिसोड 16, जो आधारित था गजल संग्रह ख्वाबों के दरमियां पर, जिसको सुनहरे शब्दों से सजाया है बांदा उत्तर प्रदेश के युवा लेखक जनाब आकिब जावेद साहब। आकिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये गजल संग्रह भेजने के लिए। ये कार्यक्रम हमारी ओर से एक सादर भेंट। उम्मीद है आपको आज का ये वितस्ता गीत माला कार्यक्रम पसंद आया होगा, और यही उम्मीद सभी श्रोताओं से भी है। आप सभी अपना फीडबैक भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010 पर, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं radiovitasta@gmail.com पर। इन्हीं भावनाओं के साथ अब अपने रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। मिलता हूं अगले कार्यक्रम में, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे प्रोग्राम विदस्ता गीतमाला एपिसोड 16, जो मबनी था जनाब आकिब जावेद के गजल मजमुआ खाबू के दरमियां पर। तावन कृष्णा और नैना, रिकॉर्ड एडिट हिदायत और पेश किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश। एक

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए लाया हूं सूत्र जीवन के, और हम आशा करते हैं कि आपके जीवन को हम सुगम बना सके। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त विशाल शर्मा। आज हम बात करेंगे कि सफल होने के लिए आपको अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठना होगा। यह कहने का मेरा मतलब है कि आपको सफल होने के लिए अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा। अगर हम गौर करें तो इंसान आदतन आलसी होता है, उसकी नेचर में ही मस्ती है और मस्ती करने में उसको बहुत मजा आता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को कहा जाए 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए तो वह बड़ी मस्ती में देखेगा, लेकिन अगर किताब पढ़ने के लिए कहा जाए तो 10 मिनट के अंदर ही उसको नींद आने लगती है, जबकि उसको पता है कि इस किताब में जिंदगी में सफल होने के सूत्र हैं, और यह भी कि इस किताब को पढ़ने से उसको जिंदगी में सफल होने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन नहीं, किताब पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ जाएगी। इसलिए सफल होने के लिए आपको अपने साथ थोड़ा सा कठोर तो होना ही होगा, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा हासिल करना है जो आज तक आपने नहीं किया, तो आपको कुछ ऐसे काम भी करने होंगे जो आपने आज तक नहीं किए। बस आज के लिए इतना ही, मिलता रहूंगा आपसे FM 90.0 पर, ताकि आपके दिल को छू सकूं। हमेशा खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: अजय सुना सरदारा की हाल है।

0: दिलीप कुमार, अरे तुम बस गाड़ी को भी यहीं पंचर हो रहा था। हम पहुँचे तो सारी आफत चल गई बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा।
1: वाह, अरे वाह, अरे वा।

彼は彼は彼はわわわ

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

नमस्ते दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको अपनी पसंद के चंद नगमे सुनवाएंगे। हमें उम्मीद है हमारी पसंद आप जरूर एक्सेप्ट करेंगे। मैं हूं इस कार्यक्रम में आपका मेजबान रमेश मराठ।

हम हैं यहां मुसाफिर, चलते हैं बेदर्द मौसम में अपनी अपनी मंजिल की तलाश है। शायद कभी मील के पत्थर को छूते और तुम्हारी मांग में सिंदूर भी भरते, तुम श्री के सफर बन पाते, पर यह राहें हैं दुश्वार और पथरीले, इन पगडंडियों में फिसलन है। और अब ये रास्ते गीले हो चुके हैं।

0: एक एहसास है। मोहब्बत एक एहसास है, खुशबू की तरह, सिर्फ इसे महसूस करने की जरूरत है। इन बुझी हुई महफिलों में शायद ये रौनकें यूं ही बरकरार रहें, गर वक्त से पहले तुम लौट आओ। तुम अक्सर कहा करते थे, लौट आऊंगी, फिर से तुम्हारे आगोश में पनाह लूंगी और एक साथ मोहब्बत के एहसास को महसूस करने की हम दोनों कोशिश करेंगे,
1: तुम जो मिल गए हो,
0: ताकि अधूरे वादों को निभाकर हम इन्हें पाए तकमील तक पहुंचा सके। यही मेरी रब से इल्तिजा है।

फिर से जब तुम लौट आओगे हमारी दुनिया में, ये हवाएं फिजाएं इन कपकपाती धड़कनों को हम संभाल लेंगे। यरकानी पत्तों के इस मौसम में अपनी मखमली दुआओं से बज़्म इलाही में शायद हमारी इल्तिजा, हमारी फरियाद सुनी जाए। हमने ये भी सुना है रब यही बसता है और उसकी रहमत का कोई हिसाब नहीं।

रहती पास पास, होती साथ साथ, शायद फुर्सत में हम तुम्हें चाहते, पर काश फुर्सत होती, दीवानेपन की हदों को दरकिनार कर ऐसा ख्वाब अपनी आंखों में बसाने से क्या हासिल जिस ख्वाब की ताबीर न हो। मिला तुमसे जो भी वो खामोश पानी की

सरसराहट, रुखसार पे मुस्कुराहट, अन सुलझे सवालात, शब रोज ख्वाबों में दस्तक देना, पथरीले रास्तों को हरा कर मुझे मेरे भटकाव से मुक्त करना, यही तेरा एहसान था, तुम्हारा करम, तुम्हारी नवाजिश थी।

दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नए कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाएं, जैसे कि आज हमने कार्यक्रम विदस्ता गीतमाला का एपिसोड 16 प्रसारित किया पहली बार। और आज का कार्यक्रम आधारित था डॉक्टर आकिब जावेद के गजलों पर। इसको हमने 9:30 बजे सुबह प्रसारित किया और साथ में इसका पुनः प्रसारण शाम के 7 बजे प्रसारित किया। बहुत सारे लोगों के हमारे पास कॉल्स आए, मैसेजेस भी आए। हमें बहुत खुशी होती है कि जब हम कोई भी कार्यक्रम तैयार करते हैं, जब आप तक पहुंचाते हैं, तो आप सभी अपना प्यार इन कार्यक्रमों को देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपका प्यार साथ ऐसे ही बना रहेगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:30। श्रोताओं, अब समय हो चला है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आपके अपने पसंदीदा स्टेशन रेडियो वितस्ता के आज के सफर को यहीं पर थामने का। सुबह से लेकर अब तक सुरों, बातों और यादों का जो कारवां आपके साथ चला, वो वाकई बेहद खूबसूरत रहा। आज मैं आपको आज के विषय के बारे में बताऊंगा, साथ में आपके लिए कुछ पंक्तियां लाया हूं, और साथ में आपको जाते जाते कल के कार्यक्रमों का विवरण भी देता हूं। पर उससे पहले आज एक बहुत ही अच्छी और जानकारी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज अम्बाला छावनी के साहिल का जन्मदिवस है। रेडियो वितस्ता टीम की ओर से, मेरी ओर से, हमारी रेडियो इंटर्न नैना की ओर से और हमारे सभी प्यारे श्रोताओं की ओर से साहिल, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में अनंत शुभकामनाएं। साहिल अभी युवा है और जीवन के एक बेहद खूबसूरत पड़ाव पर हैं। आज उनके इस खास दिन पर उनके माता पिता श्री प्रवीण जी, आरजू जी और भाई बहन ने बड़े प्यार से बधाई संदेश भेजा है। पूरा परिवार मिलकर आपको बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं और कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू साहिल। आपके लिए साहिल, हम टीम रेडियो वितस्ता की ओर से कुछ पंक्तियां ले आए हैं, वो आपके लिए मैं पढ़ता हूं। पंक्तियां यूं है, नाम है जिसका साहिल, उसकी हर बात है निराली। नाम है जिसका साहिल, उसकी हर बात है निराली। आज के इस खास दिन से महक के जीवन की हर डाली। अभी युवा है, जोश नया है, छूना है आसमान तुम्हें। अभी युवा है, जोश नया है, छूना है आसमान तुम्हें। खुशियों से भरा रहे सदा ये खूबसूरत जहां तुम्हें। खुशियों से भरा रहे सदा ये खूबसूरत जहां तुम्हें। ईश्वर करे आपके आने वाले साल कामयाबी, अच्छे सेहत और ढेर सारी खुशियों के साथ आपका हर दिन बरा रहे। मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ और जन्मदिवस की शुभकामनाएं एक बार फिर। आइए आज करते हैं बात आज के विषय की। आज के दिन को विदा करने से पहले चलिए अपनी झोली में डालते हैं आज की सकारात्मक सीख, यानी पॉजिटिव लर्निंग। जिंदगी में परिस्थितियां चाहे जैसे भी हों, हमारा नजरिया ही ये तय कर देता है कि हम बिखरेंगे या निखरेंगे। जैसे वितस्ता नदी रास्ते के हर पत्थर, हर चट्टान को पार करते हुए बिना रुके अपनी मस्ती में बहती जाती है, वैसे ही हमें जो भी जीवन की हर मुश्किल को पार करने और पार कर आगे बढ़ते रहने चाहिए। आज की सीख यही है कि बदलाव से डरे नहीं, बल्कि नदी की तरह प्रवाह में रहकर हर दिन कुछ नया सीखें, जैसे हम भी हर दिन कुछ नया सीखते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक कार्यक्रम तैयार कर रहा था तो उर्दू में एक शब्द बोसा है, मुझे इस शब्द का पता नहीं था। तो जब मैंने यह कार्यक्रम तैयार किया तो मुझे इस शब्द की जानकारी मिली और मैंने इस शब्द को अपने मन मस्तिष्क में भरा। जहां भी मुझे इसको इस्तेमाल करना होगा तो मैं इस शब्द को बहुत ही अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो हम हर दिन कुछ न कुछ सीखते हैं।
यह था आज का विषय और आज की इस खूबसूरत शाम और आज के इस सफर को आइए समेटते हैं वितस्ता के नाम इस प्यारी पंक्तियों के साथ जो आप सभी श्रोताओं के नाम है। आज के इस सफर को अब यहीं पर थामते हैं। रेडियो वितस्ता के दीवानों को दिल से प्रणाम करते हैं। आज के इस सफर को अब यहीं पर थामते हैं। रेडियो वितस्ता के दीवानों को दिल से प्रणाम करते हैं। जैसे वितस्ता हर रोज नए रास्तों से गुजरती है, जैसे वितस्ता हर रोज नए रास्तों से गुजरती है, नई यादें समेट कर कल फिर मिलने का पैगाम करती है। जी हां दोस्तों, ये सभी जानकारी आप तक मैंने पहुंचाई है नैना और कृष्णा के सहयोग से। यह था आज का विषय और जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 8 जुलाई 2026 बुधवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। हमारी सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए एक प्रकाश प्रवाह। और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 सुनेंगे आप भक्ति संगीत। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 3 पेश करेंगे आरजे गिरनी। और 8:30 सकारात्मक कहानियों का समय होता है, होगा एपिसोड 28 प्रसारित और शीर्षक होगा गलतियों से हम कितना सीखें। 9:30 कार्यक्रम होगा कसक ऐसा साथ की, एपिसोड 1 पेश करेंगे नरेश शर्मा। और 10 होगा कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 3 रिदम डिडियाला के साथ बातचीत की गई। संगीत की सभा जारी रहेगी और 6 भक्ति संगीत, 6:30 शामे गजल। और कल बुधवार है, कल 2 आपको इंतजार रहता है आपकी फरमाइश कार्यक्रम का पुनः प्रसारण का। तो कल आप सुनिएगा पुनः प्रसारण, जो पिछले शुक्रवार का कार्यक्रम था उसका पुनः प्रसारण आप कल बुधवार को दिन के 2 सुन पाएंगे। 6:30 शामे गजल, 7 सुनहरे पल एपिसोड 4 और ये कार्यक्रम गुरुदत्त पर तैयार किया गया है पेश करेंगे आरजे किरनी। और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मरहटा। और कल की कड़ी है तुम हमारे ना हो सके। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर भेजेंगे। उन सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया जो हमें हर दिन कॉल करते हैं, अपना फीडबैक भेजते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर। आप भी भेज सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर आप नोट करें जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। आज के पूरे प्रसारण में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी प्यारे श्रोताओं का दिल से शुक्रिया। अब अपने दोस्त और अपने होस्ट भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए गीतों, नई बातों और इसी मीठी सी मुस्कान के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हर दिन सुबह 6 से रात के 9 तक। कल सुबह मिलेंगे 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।